0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेन्कुवर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांवपालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा
2: सिन्दे हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतेश्वर गांवपालिका दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करदछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
2: राजकुमार श्रेष्ठ बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिपी गाउँ दोलखा।

0: काशी एवं देश विदेश में रहने भाग संपूर्ण नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: दशैं तिहारले सबै नेपालीको घर आँगनमा खुशियाली छाओस्। दुर्गा भवानी र लक्ष्मी माताले घर घरमा बास गरून्, यही शुभकामना।
0: प्रणव प्रसाद केसी अध्यक्ष, सृजना खड्का सुवेदी उपाध्यक्ष एवं तामाकोशी गाउँपालिका परिवार जफे दोलखा

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिका वासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: 不干嘛呢？
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारभू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबू दोलखा।
3: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतेश्वर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
2: राजकुमार श्रेष्ठ बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिपी गाउँ दोलखा।
3: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोलोखारो रामेछाप जिल्लावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। किम्पिक जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गाउँपालिका किर्नी तुलखा
1: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस्, यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडाध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारभू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
3: सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबु दोलखा।
4: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दो

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा
2: समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोनोखारो रामेछाप जिल्लावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। किन्ती एक जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गाउँपालिका किर्नी तुलोखा
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: 믹스보가많아
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: नेपालीहरूको महान चाड़ विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हाम्रा समस्त विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेजकिरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबाले दोलखा
2: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: विजय दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में कालिंचोक गांवपालिका वडा नंबर 7 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कालिंचोक गांवपालिका वासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन्।
1: राम बहादुर पाण्डे ओडा अध्यक्ष, वन्दना मल्ल ओडा सचिव एवं कालिंचो गांवपालिका ओडा नम्बर 7 परिवार सुनखानी दुलख।